ഏ മങ് ഹിന്ദ നാടക

करती है जिसमें बहुत से तालिबे इल्म अफसरान की बेटियां हैं। वजीर तालीम जोलिस मेगोस का कहना है कि इस मखसूस आग की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, लेकिन वालिदैन की एसोसिएशन के नुमाइंदे बर्नार्ड ओमो अंधो का कहना है कि जासूस जिंदा बचाने वाले तलबा से पूछगछ कर रहे हैं ताकि ये मालूम किया जा सके असल वाकया क्या हुआ और क्या स्कूल के फायर सेफ्टी मैनुअल पर अमल किया गया था या नहीं। इधर ऑस्ट्रेलिया में सैनेट के अंदाजों में बताया गया है कि ऑनलाइन तेजी से बढ़ती बुनियाद परस्ती अब AFP को दरपेश सबसे अहम चैलेंजेस में से एक है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट का कहना है कि बुनियाद परस्ती के अमल जो महीनों या साल लगते थे अब दिनों में हो सकते हैं क्योंकि नौजवानों को खास तौर पर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और दीगर फोरम्स पर निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने अगले 2 सालों में इस मसले से निपटने के लिए एक कौमी इंसदाद दहशतगर्दी ऑनलाइन सेंटर कायम करने के लिए $74 मिलियन देने का वादा किया है। मोहतरमा बैरेट कहती हैं ये ऑस्ट्रेलिया की इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका टीमों के लिए नफरत अंगेज ग्रोहों और दीगर अफराद के बारे में इब्तदाई इंतबाही निज़ाम फराहम करेगा जो तशद्दुद भड़काने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के सफीर को हुकूमत के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ नाकाबिल कबूल खतरात के हवाले से तलब किया है। मिखाइल पेट्राकोव जो अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में रूस के सफीर हैं को हुकाम ने बताया कि रूस की जानिब से हालिया धमकियां कि वो यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैव में इमारतें गिरा देगा बैनुल अक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रूसी खारजा उमूर के महकमे की एक जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका सब्र खत्म हो चुका है और वो गैर मुल्की शहरियों और सिफारतकारों को जल्द अज जल्द कैव छोड़ने की अपील पर कायम है। यूक्रेन के वजीर खारजा आंद्रे सिबाई ने इत्तेहादियों से कहा कि वो रूसी ब्लैकमेलिंग के आगे ना झुके। कैपिटल गेन्स टैक्स में रियायतें और मनफी गियरिंग में मुतनाजा तब्दीलियां पार्लियामेंट में पेश की गई हैं। सरमायाकारों के टैक्स छूट को महदूद करने की तजावीज को कारकुनों के लिए सालाना $2,800 टैक्स रिबेट और $1,000 की मियारी टैक्स कटौती के साथ एक ही बिल में शामिल किया जाएगा जो ट्रेजरर जिम चार्मर्स ऐवान नुमाइंदगान में पेश करेंगे। उन्होंने कहा ये तब्दीलियां बहुत से नौजवान ऑस्ट्रेलियंस के लिए मौके बराबर करने में मदद देंगी जो हाउसिंग मार्केट से एक

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: कहते हैं ये तब्दीलियां महज एक ऐसे निज़ाम की दोबारा ब्रांडिंग है जो लोगों को रोज़गार पर मजबूर करने के लिए बनाया गया, एक ऐसी मईशत में जो कम से कम 4% बेरोज़गार रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। लेबर सेनेटर डॉक्टर मिशेल एंद्रा राजा कहती हैं ये तब्दीलियां बहुत देर से आना चाहिए, जबकि ग्रीन्स की हुकूमती खिदमात की तर्जुमान पैनी एलमन पैन कहती हैं ये असलाहत काफ़ी नहीं हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया के नस्ली इम्तियाज के कमिश्नर का कहना है कि वफाकी हुकूमत को कौमी नस्ल परस्ती के खिलाफ फ्रेमवर्क को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए इकदाम करने चाहिए। इंसानी हुकूक कमीशन ने 18 माह कबल मुल्क का पहला कौमी मंसूबा जारी किया था, जिसका मकसद नस्ल परस्ती की तमाम इकसाम के खात्मे के लिए इकदाम करना था। एक दस्तावेज में जिसमें 63 सिफारिशात शामिल हैं जो काम की जगह और मुख्तलिफ शोबों जैसे कानून, तालीम, सेहत, मीडिया और फनून को कवर करती हैं, सेनेट के तखमीने के दौरान खिताब करते हुए कमिश्नर ग्रेथन सेवारामन ने कहा कि वो अभी भी रस्मी जवाब या रद्दअमल के मुतवक्का वक्त के मुंतजर हैं। वो कहते हैं हर किस्म की नस्ल परस्ती को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। उधर क्वींसलैंड पुलिस मकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि क्रेंस के जनूब में एक मुहलिक हमले में मुलव्वस शार्क की नस्ल की निशानदही की जा सके। क्वींसलैंड पुलिस इंस्पेक्टर एलन बर्न्स का कहना है कि टेलीहेड से कुछ फासले पर एक दुबई रेफ कैनेडियन शॉल में होने वाले वाकये के बाद तफ्तीशकार महकमे माहौलियात और साइंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उन लोगों की तंजीम जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का शिकार हैं ने वफाकी हुकूमत से नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम को ज्यादा काबिल रसाई बनाने की दरख्वास्त की है, खास तौर पर उस हुकूमती ऐलान के बाद कि वो अखराजात बचाने के लिए इस स्कीम को जदीद बनाएंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक न्यूरोलॉजिकल माजूरी है जिसमें जिस्म का मुदाफियती निज़ाम दिमाग के खलियात पर हमला करता है। एमएस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से की गई नई तहकीक में पाया गया है कि उसके 900 से ज़ायद जवाब दहंदगान में से सिर्फ 68% को नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम तक रसाई हासिल है, जबकि कुछ स्कीम के मुलाजमीन और जायजाकारों पर इस हालत को दुरुस्त समझने के बजाय गलत फहमी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सामईन आप सुन रहे थे SBS उर्दू पर 29 मई 2026 का हफ्ता रफ्ता और मैं हूँ वर्दा वकार। जी सामईन, तो हफ्ता रफ्ता आपने समाप्त किया और अब यहाँ ये याद दहानी कराते चलें कि SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात हर बुध और जुमे को ऑस्ट्रेलियन मशरक़ी वक्त के मुताबिक सुपहर 3 बजे साउथ एशियन पर नशर होती है। बुध का प्रोग्राम SBS 2 पर शाम 6 बजे और जुमे का प्रोग्राम SBS 2 पर इतवार को शाम 6 बजे नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप ये प्रोग्राम शाम को SBS 2 पर सुन रहे हैं तो कुछ खबरें तब्दील हो सकती हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए sbs.com.au/urdu पर जाइए। इसके अलावा SBS उर्दू को तलाश कीजिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी मौजूद है SBS उर्दू और यूट्यूब पर भी अब आप SBS उर्दू सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। SBS साउथ एशिया पर उर्दू प्रोग्राम का इंतखाब कीजिए और अपनी पसंद के अवकात में अपनी पसंद के पॉडकास्ट सुनिए। यूट्यूब पर कुछ तवील दौरानी की वीडियोज़ मिलेंगी आपको, जबकि उन्हीं का छोटा वर्जन आप इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे, जबकि इंस्टाग्राम पर आपको सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू भी मिलेंगे और कुछ इन्फ्लुएंसर्स की बातें भी मिलेंगी। फेसबुक के पेज पर जाकर आप हमें पैगामात भेज सकते हैं, हमें ये बता सकते हैं कि आपको नशरियात में क्या कुछ पसंद है और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि ऐसी कौन से मौजूआत हैं जिनका SBS उर्दू को अहाता करना चाहिए और ये भी कि कैसी मौसीकी आप नशरियात में सुनना चाहते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं फेसबुक के पेज पर जाके SBS उर्दू के और हमें पैगाम भेज सकते हैं। इसके साथ ही हम नशरियात में शामिल करते हैं पहला गीत, आपको सुनवाते हैं और का फूल।

0: Hits from Home.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: इंतजामिया तक पहुंचा सकती हूँ। इसके बावजूद कि मैं उनकी जुबान नहीं समझती, लेकिन उर्दू ही वो जरिया है जिसकी वजह से मैं फारसी बोलने वालों से बात कर पाती हूँ।
5: बिल्कुल, बहुत आपने खूबसूरत बात की। वाकई जैसे आपने मुदा का इस्तेमाल किया, ये भी उर्दू में बहुत कम होता है। उर्दू में क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि अब अंग्रेजी बहुत ज्यादा हो गई है पाकिस्तान में भी? आपको फारसी तो छोड़िए, आपको उर्दू भी अब उतनी सुनने में नहीं मिलती जितनी उसमें अंग्रेजी की आमेजिश हो गई है।
4: जी बिल्कुल, ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में जो अम्माएं हैं वो बच्चों से कहती हैं कि हैंड वॉश करके लंच कर लो, तो मैं तो इससे ये होता है कि या फिर कहते हैं ओ टमी में दर्द हो रहा है, तो मैं इस बात को, मैं कोई किसी का के बारे में कोई राय कायम नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ ये मसला है कि अंग्रेजी जुबान चूंकि स्कूलों में पढ़ाई जाती है बहुत छोटे दर्जे से, तो उसकी वजह से ये होता है कि अंग्रेजी जुबान के बहुत सारे अल्फाज अब उर्दू में इस तरह मुस्तामिल हैं कि उर्दू में उनका क्या नेमुल बदल था लोगों को मालूम ही नहीं है। और पाकिस्तान और अक्सर जब मैं कोई बात करती हूँ, जैसे मैं जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थी तो मैं बहुत सारे लोगों को तकरीरें भी लिख कर देती थी, तो वो मुझे कहते थे कि उफ तुम बहुत मुश्किल उर्दू लिखती हो, प्लीज इसे आसान करो। तो मेरी इस मामले में इतनी सख्त पॉलिसी थी कि मैं कहती थी कि नहीं, मैंने उर्दू आसान नहीं करनी, तुम लोग अपनी उर्दू को बेहतर करो, यही तकरीर करो, क्योंकि हम आसानियां पैदा करते करते करते करते हम अपनी जुबान से वो सारे लफ्ज निकालने शुरू हो गए हैं जो हमारी जुबान का हुस्न है। हत्ता कि मैं उर्दू को बहुत कोशिश करती हूँ कि डिठाई से अपने घर में उर्दू बोलूं, लेकिन इसके बावजूद अभी मेरे से गुफ्तगू करते हुए भी आपको महसूस हो रहा होगा कि काफी ऐसे अल्फाज हैं जिनके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए रुक कर सोच कर उसका उर्दू में नेमुल बदल तलाश करके फिर बोलना पड़ता है। तो वालदैन को चाहिए कि वो ये थोड़ी सी कोशिश करें, क्योंकि मेरी उम्र के अफराद जो मेरे ही जमाने में स्कूलों से पढ़े हैं वो भी मुझे ये कह रहे होते हैं कि तुम बहुत मुश्किल उर्दू बोलती हो।
5: फायजा इदरीस समझती हैं कि जुबान सिर्फ बोली नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती है, और यही एहसास मुख्तलिफ सकाफतों के दरमियान फासले कम कर सकता है।
4: मैं जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मैं बहुत ज्यादा इस बारे में पुरजोश थी कि मुझे यहाँ पे आके उर्दू की किसी ना किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा बनना चाहिए जो उर्दू की तरवीज के लिए काम कर रही हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने महसूस किया कि अमरीका और बरतानिया के बरक्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर उर्दू से उस तरह से मोहब्बत नहीं की जा रही जैसी करनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस राय से मुत्तफिक ना हो, लेकिन ये मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अमेरिका और बरतानिया में जो लोग अब बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में गए, अब उनकी दूसरी या तीसरी या चौथी नस्ल अमेरिका और बरतानिया में रह रही है, वो लोग वहां पे अच्छी तरह मौशी तौर पे मुस्तहकम हो चुके हैं, अपने घर बार बना चुके हैं, जायदादें बना चुके हैं, तो फिर उन्हें एक सुबह उठ के ख्याल आता है कि ओह मेरा पोता तो मुझे दादा के अलावा उर्दू में कोई बात ही नहीं करता, तो फिर वो सोचते हैं कि हाँ उर्दू के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैं उर्दू बोलने वाले जितने अफराद को ऑस्ट्रेलिया में जानती हूँ, ये लोग वो हैं जो अभी शायद पिछले 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आए, और कुछ लोग तो बिल्कुल ही पिछली दहाई में ऑस्ट्रेलिया आए, तो अभी चूंकि लोग अपनी मौशी जद्दोजहद से ही नहीं निकल पाए तो वो उर्दू को उस तरह से वो अहमियत नहीं दे पा रहे, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि वो सबसे पहले अपनी मौशी जरूरियात को पूरा करता है और फिर उसके बाद अपनी तहजीबी जरूरियात और तफरीही जरूरियात पे तवज्जो देता है, क्योंकि जुबान तहजीब का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जुबान के ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही हमारे उर्दू बोलने वाले खानदानों में जिस तरह इस जुबान का हक है।
5: ये थी फायजा इदरीस, जिनकी गुफ्तगू में अदब की नरमी भी है, हिजरत का एहसास भी, और जुबानों के जरिए दिलों को जोड़ने की एक रोशनी भी। ये पॉडकास्ट आपके लिए शादी खान सैफ ने तैयार किया था।
6: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।
7: और अब नशरियात में शामिल करते हैं हमदिया कलाम अल्लाहू आतिफ असलम की आवाज में।

0: SBS वर्ल्ड मूवीज आलमी कहानियों से कशीद की हुई एक दुनिया 24 घंटे सातों दिन चैनल 32 पर बिल्कुल मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम के जरिए देखिए। NITV का द पॉइंट हिकमत अमली और तजियों पर मबनी इंटरव्यूज एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स अफराद की सकाफत सियासत और माशरती मसाइल का अहाता किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर। दुनिया भर के लोगों की कहानियां देखिए SBS के अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री शो डेटलाइन पर। डेटलाइन हर मंगल को 9:30 बजे शब या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
1: सुनिए मुनफरिद कहानियां किसी भी मोबाइल डिवाइस से। मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। SBS उर्दू की बराह रास्त नशरियात में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान वरदा वक़ार, जो आपको नशरियात के आखिरी हिस्से में खुश आमदेद कहती है। सामई नशरियात के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेलों के मैदान की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए तैयार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की वेमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद है। क्रिकेट के अलावा खेलों के मैदान में क्या गहमा गहमी है, सुनिए हाफिज बिलाल की तैयार करदा स्पोर्ट्स रिपोर्ट में।
0: यकीनी बनाइए कि आपको सिर्फ वो खबरें ना मिलें जो सोशल मीडिया फीड आप तक पहुंचाना चाहता है, बल्कि आपको खबरों के हर जाविये का इल्म हो। हमारी तमाम खबरें और कहानियां जानने के लिए आज ही अपने वेब ब्राउजर पर SBS उर्दू की वेबसाइट को बुकमार्क करें sbs.com.au/urdu। आप SBS उर्दू के साथ हैं।
2: SBS उर्दू के लिए मैं हूं हाफिज मोहम्मद बिलाल। आज खेलों की खबरों का आगाज करेंगे कैंगरूज और शहीनों के दरमियान होने वाली वन डे सीरीज से। जी सामिन, कैंगरूज के पाकिस्तान में डेरे। ऑस्ट्रेलवी बैटर मैथ्यू शार्ड ने कहा कि पाकिस्तान के गर्म मौसम से कोई मसला नहीं। टीम के कई खिलाड़ी हाल ही में समर क्रिकेट खेल चुके हैं। इन्होंने कहा कि स्पिन कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया की हालिया कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, स्पिन कंडीशन में बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। चंद सीनियर खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं, नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका है, जबकि पाकिस्तान को होम कंडीशन में आसान हरीफ नहीं समझते।
3: Yeah, I mean, I think when we look back at the last sort of T20 series we had here before the World Cup, I think those we could sort of in preparation of the World Cup, what we'd sort of seen in Sri Lanka and had some pretty tough spinning conditions there, so not 100% sure what they're going to produce for us here. But yeah, if it's anything like that, we are prepared. You know, it was a bit of a disappointing 3-game series for us before the World Cup there. But yeah, if we are to face those conditions again, we're ready for them, and we're certainly preparing for them. If you look at our sort of personnel and our change of the squad, I think you know, we've got a really good core group of senior players, but you know, we've got some younger players coming in like Liam Scott and Ollie Peak, so we're really looking at some young faces here as well, you know, with guys to come back from RPL. So you know, as I said, we've got some fresh faces and some senior players as well, so hopefully we can sort of mix them in and around the group and get some solid performances on board. Anytime you play against an opposition, you want to win, and Pakistan have had it over us the last couple of series, so we're certainly in the hunt for a win and a series win. I know there's been a lot of talk around a lot of test cricket coming up for Australia, but you know, we really want to make sure we win these sort of little white ball series here and there. I don't think so. The guys have come off an Australian summer, they're pretty fresh from that, so weather can get pretty hot in and around Australia there, so a lot of guys coming from India from the IPL, which is probably similar conditions, but you know, a nice 4:30 starts here are going to be nice. It's not going to be too warm.

0: अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के 104 मैच कब और कहां कहां होंगे। जी सामने दुनिया में सबसे मकबूल खेल फुटबॉल का 23वां वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून 2026 से शुरू हो रहा है और ये मुकाबले 29 जुलाई तक जारी रहेंगे। फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में ये पहला मौका है जब तीन ममालिक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर इन मुकाबलों की मेजबानी कर रहे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 104 मैच खेले जाएंगे जो अमेरिका के 11, मैक्सिको के 3 और कनाडा के 2 शहरों में मुनक्किद होंगे, जबकि इफ्तिताही मार्का मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला जाएगा।
1: अब्दुल्ला शाह है, पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम डिफेंडर। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वर्ल्ड कप विच इज़ हैपनिंग इन अमेरिका, मैक्सिको एंड कनाडा। आई विल बी सपोर्टिंग पोर्चुगल, एज यू नो माय फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो गोना बी प्लेइंग हिज लास्ट वर्ल्ड कप फॉर पोर्चुगल, एंड या डेफिनेटली आई विल आल्सो बी गोइंग टू वॉच दिस वर्ल्ड कप एंड होपफुली पोर्चुगल कैन विन दिस वर्ल्ड कप।
0: अब बात करेंगे फातिमा सना ने कहा वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी कर रखी है, किसी एक मैच पर नजर नहीं। जी सामिन कौमी वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने कहा कि आयरलैंड की सह मुल्की सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश हैं, टीम का मोराल बुलंद है, टीम गुज़िश्ता वर्ल्ड कप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार है। फातिमा सना ने कहा कि पावर हिटिंग और प्रेशर में खेलने पर भी काम किया, जबकि पाकिस्तान टीम हर हरीफ के खिलाफ एक ही जारहाना अंदाज अपनाएगी, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों का नहीं सोचना। वाजिया रहे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा।
2: आई थिंक बिफोर दी वर्ल्ड कप इस सीरीज में आना और एक अपॉर्चुनिटी को मिलना यही सबसे अच्छी बात है टीम के लिए, और वर्ल्ड कप से पहले हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें वर्ल्ड कप के लिए उतना अच्छा है। और सिमिलर कंडीशन है, सबसे बड़े एडवांटेज यही होगा कि इंग्लैंड और आयरलैंड सेम कंडीशन हैं, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जितना बेस्ट प्रिपेयर कर सकें करें। वर्ल्ड कप से पहले किसी भी टीम के अगेंस्ट आप खेलो और सिमिलर कंडीशन हो तो बेनिफिट तो होता ही है, और जिस तरह की ये दोनों टीम्स हैं हमें पता है कि अच्छी टीम्स हैं और अच्छी कंडीशन हैं। कोशिश यही है कि यूनाइटेड होके खेलें, और जिस तरह पास में खेला है साउथ अफ्रीका की सीरीज, जिम्बाब्वे की सीरीज, तो काफी कुछ उससे सीखा भी है। कहीं कहीं जहाँ ऑब्वियसली हमारे अच्छा जा रहा था सब कुछ, बैक टू बैक अच्छा चल रहा था, बट ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की जरूरत हर जगह ही होती है, तो जहाँ जहाँ हम लोग लैग कर रहे थे उस पर काम किया। लास्ट 4 डेज का भी हमारा कैंप लगा था लाहौर में, तो वहां पर भी हमने जो लैग करी थी चीजें उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें कि उसको बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर कर सकें। तो आई थिंक यही चांस है जिसमें हर लड़की अपने आप को प्रूव कर सकती है।
0: अब आखिर में बात करेंगे पाकिस्तानी स्टार पलवश्या बशीर कैनेडियन मास्टर चैंपियन बन गई। जी सामिन पलवश्या बशीर ने कैनेडियन मास्टर टूर्नामेंट के 35 एज ग्रुप का सिंगल टाइटल पर शानदार कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी स्टार प्लेयर ने फाइनल में कनाडा की टॉप सडीना राइस को शिकस्त देकर बड़ा एजाज अपने नाम किया। तरीकी कामयाबी के बाद पलवश्या बशीर का कहना था कि कैनेडियन मास्टर चैंपियनशिप में दुनिया भर से 300 से जायद प्लेयर्स शरीक थे। इन्होंने कहा कि मास्टर्स कैटेगरी में शिरकत का मतलब ये नहीं कि मेरा ओपन कैटेगरी कैरियर खत्म हो गया। SBS से खसूसी गुफ्तगू में क्या कहा आपको सुनाते हैं।
3: मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जाहिर सी बात है हर चैंपियनशिप के लिए जो होता है हम प्लेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे नाम से पहले हमारे मुल्क का भी नाम जुड़ा हुआ होता है। और ये मेरा पहला मास्टर्स कैटेगरी था जिसमें मैं शिरकत कर रही थी, और मैंने काफ़ी अपने कोचेस के साथ काफ़ी मेहनत की थी इस टाइटल के लिए। हम लोगों ने यही सोचा था कि हम मैच टू मैच प्ले करेंगे, सारे अपोनेंट्स जो थे बिल्कुल न्यू थे मेरे लिए, तो मैं हर मैच पे फोकस कर रही थी। एंड अल्लाह ताला की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी फैमिली की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मुझे ये एहसास हासिल हुआ। जी

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर. शुक्रवार 29 मई 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार। सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं। SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी मूल निवासियों और टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज आपके लिए कुछ सवाल भी रहेंगे। सवाल एक तो आप जानते ही हैं, हम एक फिल्म के लिए फ्री पासेस दे रहे हैं तो उससे संबंधित सवाल मैं आगे पूछूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इसको सुनिए और पहचानिए कि इसमें कौन कौन से साज शामिल हैं। तो आपने इन साजों को पहचानने की कोशिश की होगी, इसमें तीन साज एक साथ हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइएगा कि ये कौन से साज हैं। और आपको बताती चलूँ कि कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रोजगार सेवाओं में नए सुधारों की। मेलबर्न में विमटम सिटी काउंसिल में एक प्रदर्शनी है, उसके बारे में आपको उसकी जानकारी देंगे और हम बात करेंगे कुछ भूली दास्तान की। जी हाँ, ये है स्लैम पोएट्री और रिसाइटेशन कला को जो एक नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसका एक अंश आप सुन सकेंगे कि किस तरह से कलाओं को एक आधुनिक आवाज़ मिल रही है। शायरी, गज़ल, संगीत और कहानी, ये सब का मिश्रण। तो ये सब चीजें आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश। नमस्कार, शुक्रवार 29 मई के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का कहना है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच डील में तरक्की हो रही है और इससे सीज फायर बढ़ सकता है, साथ ही यह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का रास्ता बना सकता है। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित एग्रीमेंट सीज फायर को 60 दिनों के लिए बढ़ा देगा, हालांकि इसके लिए अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की लीडरशिप दोनों की मंजूरी चाहिए। वेंस का कहना है कि बातचीत करने वाले अभी भी कई रुके हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि दोनों पक्ष एक एग्रीमेंट के करीब हैं। ईरान का कहना है कि उसकी रिवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने बिना इजाजत के हॉर्मस स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे चार जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई हैं। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट है कि जहाजों को ईरानी सेना ने चेतावनी दी थी और बाद में उन्हें वापस भेज दिया गया। ये घटना तेहरान द्वारा इस अहम जनमार्ग से शिपिंग की निगरानी के लिए एक नई संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी बनाने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पहुंचे हैं। कांगो इबोला के बड़े आउटब्रेक से जूझ रहा है। टेड्रोस एडनॉम ग्रेब्रेस का कहना है कि देश के पूर्वी हिस्से में लड़ाई, जगह बदलने और खाने की कमी की वजह से मुश्किलें हो रही हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इबोला के संदिग्ध मामले करीब 1000 हो गए हैं और कम से कम 220 मौतें होने का शक है। ब्रिस्बेन के विक्टोरिया पार्क में कम से कम 40 पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये ओलंपिक स्टेडियम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट नेशंस के प्रदर्शनकारियों ने उस जगह पर एक एवरिजिनल टेंट एम्बेसी बनाई है। उनका कहना है कि इस डिवेलपमेंट से सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन नष्ट हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे इस प्रोजेक्ट का विरोध करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पीक फार्मिंग बॉडी फेडरल सरकार से कैपिटल गेन टैक्स में छूट की सीमा को अब अपडेट करने की मांग कर रही है और चेतावनी दे रही है कि फैमिली फार्मर्स अनजाने में बड़े टैक्स सुधारों में फंस सकते हैं। नेशनल फार्मर्स फेडरेशन का कहना है कि ज़मीन की कीमतों और खेती की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी के बावजूद 2007 से एलिजिबिलिटी सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मेलबर्न की एक महिला जिस पर सीरिया जाने के बाद आईएस में शामिल होने का आरोप है वो मेलबर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुई है और जमानत की मांग कर रही है ताकि वो अपने चार बच्चों की देखभाल कर सके। 34 साल की इस महिला पर घोषित संघर्ष वाले इलाके में घुसने और एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने का आरोप है। इन अपराधों में अधिक से अधिक 10 साल जेल की सजा हो सकती है। और एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार भारत उत्तर प्रदेश में शामली से गोरखपुर तक प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में से एक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर 750 किलोमीटर लंबा है। इससे निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है ये कि प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा हो सकता है। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारी फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। और श्रोताओं, न्यूज फ्लैश के बाद सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया में रोजगार सेवाओं में नए सुधारों की बात, यानी ये ऐलान किया गया है। सरकार इसे बड़ा बदलाव बता रही है लेकिन आलोचक ऐसा नहीं मान रहे। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में और इन पर सामने आई अलग अलग राय के बारे में नबील हसन की इस रिपोर्ट में।
2: सरकार ने रोजगार सेवाओं में पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा सुधार बताई जा रही नई योजना का ऐलान किया है। यह व्यवस्था बेरोजगार ऑस्ट्रेलियाई लोगों को नौकरी ढूंढने में मदद करने के लिए बनाई गई है लेकिन म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस और प्राइवेट प्रोवाइडर्स जारी रहने के कारण समर्थकों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ नाम बदलने जैसा है। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं नबील हसन। वर्कप्लेस मिनिस्टर अमांडा रिश्वर्थ के लिए यह पिछले 3 दशकों में ऑस्ट्रेलिया की रोजगार सेवाओं में किया गया सबसे बड़ा बदलाव है।
3: At an individual level, the system has one objective, to place people in a suitable, meaningful job. But it must do more than just job matching. A well-functioning employment service system must also be able to provide the right assistance to job seekers.

0: कि जो घुसपैठ करकर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने 600 हेक्टेयर जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंप दी है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की 121 हेक्टेयर जमीन भी भारत सरकार को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए अमित शाह कहते हैं,
0: हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टर भूमि भारत सरकार को दे दी।
1: और चर्चा सीबीएसई के ओएसएम विवाद की। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा है। गुरुवार को सीबीएसई के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बैठक की। ओएसएम तकनीक का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायत को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सीबीएसई के परिणाम के दौरान हुई कुछ गड़बड़ियों को उन्होंने स्वीकार भी किया।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पर हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनके मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पहले नीट पेपर लीक, इसके बाद सीबीएसई विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे पर काफी मुखर हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप शिक्षा मंत्री पर लगाते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा है। राहुल गांधी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं,
2: राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं, निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया है, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया, भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग अभी इन

0: Hits from Home.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: कहा है कि वह सरकार से जा रहे हैं लेकिन राजनीति में सक्रिय बने रहेंगे।
3: I will continue in active politics.
2: सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वैसे इसका अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि नया मुख्यमंत्री केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा के अनुसार ही बनेगा।
3: Whatever less leader party takes a decision, Congress leader party takes a decision, and High Command takes a decision, he will be the chief minister of this state.
2: बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। इसके अलावा नई सरकार के गठन को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक गतिविधियां तेज हो गई हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इसी बैठक में नए सरकार की दशा और दिशा तय हो जाएगी। और अंत में चर्चा मौसम की। भीषण गर्मी से परेशान उत्तरी पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में आज बारिश राहत लेकर आ सकती है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम सिस्टम के कारण यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब सहित 15 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लंबे समय से गर्मी का कहर झेल रहे लोगों के लिए बारिश राहत भरी हो सकती है, लेकिन आंधी तूफान के कारण मुश्किलें भी सामने आ सकती हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
4: तो श्रोताओं, भारत की रिपोर्ट आप सुन रहे थे। हमारी श्रोता रीत दुआ ने इंस्ट्रूमेंट्स को पहचान कर अपना जवाब लिख भेजा है, आप भी पहचानिए। इसके लिए इस झलक को एक बार दोबारा आपके लिए सुनवा रही हूँ। तो पहचानिए और जवाब लिख भेजिए 0439-799-767 पर। और मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
5: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
6: We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
7: SBS South

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS स्पोर्ट खेल प्रेमियों के लिए नंबर एक जगह। साइकिलिंग, मोटर स्पोर्ट, विश्व एथलेटिक्स और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/sport पर जाएं।
3: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए।

0: हमारे फेसबुक पेज पर हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
1: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। श्रोताओं, फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, इसके डबल पासेस जीतने के लिए आपने हमें बताना है इस फिल्म के निर्देशक का नाम, अपने नाम और ईमेल के साथ में। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एक गाने के साथ। इस गाने के साथ ही आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी फिल्म का है, और अगर फिल्म नहीं जानते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इसके संगीतकार कौन हैं। लिख भेजिएगा आप इसके बारे में भी।

जी, तो आप ये गाना सुन रहे थे, क्या आपने पहचाना कि ये कौन सी फिल्म का है और इसके संगीतकार कौन है? लिख भेजिएगा। और इस बीच में हमारे श्रोता पीयूष जी ने भी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखे हैं, आप भी पहचानिएगा। अभी एक बार उसको फिर से सुनवा दूंगी उसकी झलक, लेकिन पहले बात करते हैं कि मेलबर्न के विंडम सिटी काउंसिल ने भारतीय मूल की प्रथम राष्ट्र की महिला कलाकार हेली मिलर बेकर के आर्ट वर्क की प्रदर्शनी लगाई है और इसके साथ में हिंदी टूर भी आयोजित किए गए।

0: रहे हैं। तो क्या है ये और हेली भारत से कैसे जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं इस बातचीत में। और हमारी सहयोगी वृषाली जैन ने ये बातचीत की है जसप्रीत शाही से, जिन्होंने इसकी हिंदी टूर को ऑर्गेनाइज किया है। तो सुनते हैं ये बातचीत।
1: दोस्तों, आज हम एक बड़ी ही अलग किस्म की चर्चा कर रहे हैं भाई। विंडम आर्ट गैलरी जो कि मेलबर्न में है, वहां पर हेली मिलर बेकर सिलेक्टेड वर्क्स नाम की एक एग्जीबिशन जारी है, जहां पर हेली मिलर की आर्ट वर्क्स हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। वे एक इंडिजिनस आर्टिस्ट हैं। क्या कुछ प्रदर्शित है, कैसे कुछ प्रदर्शित है, उस पर चर्चा करेंगे जसमीत कौर साही के साथ, जो कि इस पूरी एग्जीबिशन के हिंदी टूर करवा रही हैं। तो जसमीत, सबसे पहले तो आपका SBS हिंदी में स्वागत है।
2: थैंक यू, शुक्रिया आपका वृषाली।
1: आपसे ही जानेंगे जसमीत की सिलेक्टेड वर्क्स बाय हेली मिलर बेकर क्या है, क्यों ये एग्जीबिशन जरूरी है और हम किस लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं।
2: जी देखिए, जैसे कि आपने कहा, हेली मिलर बेकर जो हैं वो एक इंडिजिनस कलाकार हैं। वो एक गुंडिचमारा, जबवरंग और एंग्लो इंडियन आर्टिस्ट हैं। वेरबी में रहती हैं। उनके करियर के 10 साल पूरे होने पर ये एक प्रदर्शनी उन्होंने विंडम आर्ट गैलरी ने रखी है। वो वेरबी में ही पली बड़ी हैं, वहीं पे स्कूल गई हैं।
1: तो इस एग्जीबिशन के हिंदी टूर करने का कहां से एक ये पूरा आइडिया आया और क्यों ये हिंदी टूर जरूरी है जसमीत?
2: देखिए, जो गैलरी है, गैलरी की जो क्यूरेटर हैं, उनका नाम है ओलिविया पलोनी। उन्होंने मुझसे ईमेल पे ये बात कही। उनके आर्ट टीम में एक बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर हैं, इप्सिता कॉलिंस, उन्होंने नाम सजेस्ट किया। हेली हैं, उनका जो हेरिटेज है, बैकग्राउंड है, उनका एंग्लो इंडियन बैकग्राउंड है। उनके जो ग्रैंडफादर हैं 1950s में यहाँ आए, उनकी जो मिक्स्ड हेरिटेज है, उसकी वजह से उनकी ये इच्छा थी कि हिंदी में एक टूर आयोजित हो जाए इस एग्जीबिशन में। हेली के जो पति हैं वो भी एंग्लो इंडियन है, उनकी फैमिली मेरे ख्याल अलाहाबाद से है। तो वो चाहती थी कि उनका जो पूरा काम है वो एक टूर हिंदी में रहे। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सिटी ऑफ विंडम जिसे कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा विक्टोरिया में भारतीय लोग रहते हैं और वो एक ऐसी LGA है जहाँ पे बहुत ही तेजी से एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों की आबादी भी बढ़ रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग लोकेशन है जहाँ पर मेरा मानना है कि ऐसी प्रदर्शनी इन सब समुदायों को करीब ला सकती है।
1: तो आपने इस टूर को करने की हामी क्यों भरी?
2: देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है वो राइटिंग एडिटिंग में है। मैं ऑस्ट्रेलिया आई 14 साल पहले यही पढ़ने, हालांकि मैं ये इंग्लिश में करती हूँ। भारत में पली बड़ी हूँ तो मैं हिंदी भाषा से काफी वाकिफ हूँ। ऑल्दो मदर टंग पंजाबी है, पर क्योंकि मैं हिंदी बोल सकती हूँ और मुझे इंटरेस्ट है, मैंने काफी ट्रांसलेशन का काम किया है। एक्चुअली अंकल ब्रूस पैस्को हैं, जो सीनियर एबोरिजिनल आर्टिस्ट हैं, उनकी भी एक कविता मैंने ट्रांसलेट की है। तो मुझे इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि जब हम हिंदी में ये चीजें पढ़ते हैं, इनको अब्सॉर्ब करते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। फर्स्ट नेशंस आर्टिस्ट के एग्जीबिशन को हिंदी में टूर किया जाए, ऐसा मैंने नहीं सुना। तो मैंने सोचा कि ये बहुत ही बढ़िया एक मौका है और क्यों नहीं कोशिश की जाए, एक कोशिश ही कर सकते हैं, नहीं
1: जी। और जसमीत, थोड़ी बात करते हैं हेली के काम के ऊपर। तो उनकी जो फर्स्ट नेशंस हेरिटेज है, एंग्लो इंडियन हेरिटेज है, वो उनके काम को किस तरह से एक आकार देती है, इस पर बात करते हैं। क्या है इस एग्जीबिशन में ऐसा खास जो इन दोनों तरीके की हेरिटेजेस को भी रिफ्लेक्ट करता है, झलकाता है, प्रदर्शित करता है?
2: देखिए, अक्सर काफी मुश्किल होता है कि एक आर्टिस्ट की जो उनकी हेरिटेज है उसमें कहा जा सके एग्जैक्टली कहाँ पर वो इन्फ्लुएंस है। उनका काम ज्यादातर कोलाज, फिल्म और फोटोग्राफी के आसपास है। मेरे ख्याल पेंटिंग से स्टार्ट किया था। कोलाज, फिल्म और फोटोग्राफी में आप इस एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं उनके 6 सीरीज ऑफ वर्क्स हैं, जो एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर महिलाओं की जो शक्ति है और उनका जो बल है, उसके ऊपर ये एग्जीबिशन केंद्रित है। एक मल्टी जनरेशनल लेंस की तरीके से वो अपने पर्सनल और पॉलिटिकल जो उनकी जिंदगी है, उसका एक मेल जो होता है, उसका एक दृष्टिकोण उन्होंने दिखाया है।
1: इसको आपको हिंदी में

0: हलने में कितना मुश्किल हुई, और किस तरीके से आपने ये सुनिश्चित किया कि जो इसकी कल्चरल सेंसिटिविटी है वो भी बनी रहे और हिंदी के जो श्रोता हैं उनके लिए भी एक नई जानकारी रहे। और अगर मैं कहूँ कि आपके लिए क्या नई जानकारी निकल के आई इस पूरे एक्सरसाइज से, तो वो क्या रहेगी?
1: देखिए, मैं तो कहूंगी पिछले 2 हफ्तों में मैंने तो नए ब्रेन सेल्स उगा लिए, बिल्कुल इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ मेरा सोचने का और ये चीजें सुनिश्चित करने का कि किस तरीके से हम एक कल्चरली सेंसिटिव तरीके से ये कहानियां जो हैं, जो हेली बता रही हैं अपने काम काम के द्वारा, हम हिंदी में मैं इनको ढाल सकूं। एक एहसास ही है जो हम श्रोताओं को या दर्शकों को दिखा सकते हैं। जो ये कहानियां हैं हम सबके लिए अननोन तो है नहीं, इस देश का जो इतिहास है हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। हम खुद भारतीय जो लोग हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, हम ब्रिटिश राज के बारे में भी काफी वाकिफ हैं। ऑल्दो कहना पड़ेगा कि जो उसका प्रभाव है वो बहुत ही अलग है। हम अभी भी अपनी संस्कृति, अपने सभ्याचार, अपनी चीजों को बनाए हुए हैं, वैसा यहाँ पूरे तरीके से तो नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही जरूरी है कि ये कहानियां हम अनेक अनेक भाषाओं में सुने, जो कि अब ऑस्ट्रेलिया एक जिसे कहते हैं मल्टीकल्चरल कंट्री है।
0: जी, तो इस पूरे टूर को लीड करने का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा क्या रहा है? और अगर आप कोई उदाहरण हमें दे सके कि हेली के किस काम में आपको क्या लगा, जैसे हमने कई सारी चर्चा की इतिहास की बात की, लेकिन अगर हम इसे एक उदाहरण से समझ सके कि किस तरीके से हेली का कोई एक काम रहा हो, क्योंकि बात जरा साफ होगी फिर।
1: देखिए, एक उनकी बहुत बढ़िया एक फिल्म है जिसका नाम है द अम्ब्रा। वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में है, एक एबोरिजिनल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात होती है इस फिल्म में। बहुत ही सटल फिल्म है, हॉरर मिस्टीरियस सी कुछ चीज है इस फिल्म में। उसको हिंदी में कैसे बताया जाए, इसलिए मेरा सबसे पहला अप्रोच रहा है इस पूरे टूर को बनाने के लिए कि एक एहसास बहुत जरूरी है। मेरी जब बातचीत भी हुई थी हेली के साथ, जब मैं ये तैयारी कर रही थी इस टूर के बारे में, तो मैंने उनको यही कहा था कि आप क्या चाहती हैं, सबसे क्या महसूस करें। उनका यही कहना है कि मैं चाहती हूँ मीट मी हाफ वे। मैं उनको उनकी भाषा में ये कहानियां सुनाना चाह रही हूँ और लोग वो महसूस कर सकें। तो अब मेरे लिए एक वो फिल्म के बारे में बोलना काफी एक अच्छा चैलेंज रहा। और दूसरा था कि जो कि एक पर्सनल चैलेंज है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंट्री होती है जो कि हम स्टार्ट में बोलते हैं, उसको हिंदी में लिखना, उस चीज में मैं काफी टाइम लगा क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एकदम सही हो। तो ये दो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही मैं कहूंगी बढ़िया चैलेंजेस रहे।
0: हेली मिलर बेकर सिलेक्टेड वर्क्स विंडम आर्ट गैलरी वेरीबी में अभी प्रदर्शित है। 13 जून 2026 को इसका दूसरा और आखिरी हिंदी टूर किया जाएगा। मई महीने की शुरुआत में इसका पहला हिंदी टूर हो चुका है। जसमीत साई के साथ हुई यह बातचीत रिकन्सिलिएशन वीक के दौरान। आपके लिए लेकर किया आई एस बी एस हिंदी से वैशाली जैन।
2: तो श्रोताओं, आप ये जानकारी ले रहे थे कि प्रथम राष्ट्र महिला कलाकार हेली मिलर बेकर की आर्टवर्क की जो प्रदर्शनी लगी और वो कैसे भारत से संबंधित हैं उसके बारे में आपने जाना। और आपसे मैं ये भी पूछ रही हूँ कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो सोचा एक इसकी झलक एक बार और सुनवा देती हूँ। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप उनको पहचानिए और हमें अपना जवाब लिख भेजिए। मिलती हूँ आपसे इस अंतराल के बाद।
3: चैनल 33 पर SBS फूड जो परोसता है सबसे स्वादिष्ट जगह, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भोजन में बड़े नाम। SBS फूड चैनल 33 पर 24 घंटे पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार। SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए 7 दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
4: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट।

0: आपकी लय से मेल खाते हुए।
1: SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है। sbs.com.au/guide पर जाएं।
2: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
3: Learn to speak English. Find videos, podcasts and advice to help you settle into daily life in Australia. Speak everyday Aussie with SBS Learn English.
4: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार। विक्रम बड़वार जी ने भी अपना उत्तर लिख भेजा है कि वो कौन से साज हैं, और वैसे वो कौन से साज हैं उनके बारे में मैं आगे कार्यक्रम में बताऊंगी। और श्रोताओं बताती चलूं कि आप अपने संदेश भेजते रहें कि फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, इसके निर्देशक कौन है, अपने नाम और ईमेल के साथ, ताकि आप भी उस ड्रॉ में शामिल हो सकें। और इसके अलावा अभी हम आगे बात करते हैं, एक शो जो आने वाला है वो भूली दास्तान, लेकिन उस दास्तान से पहले एक गाना सुनते चलें।

0: और आइए श्रोताओं, अब बात करते हैं एक शो वो भूली दास्तान, जहां है संगीत और कहानी कथन भूली बिसरी कहानियों को फिर से जीवन देने की बात, यानी स्लैम पोएट्री। इस अंश को प्रस्तुत कर रही हैं भव्या पांडे।
1: दोस्तों, कहते हैं जुबानें अलग हो सकती हैं, लेकिन जज्बात हमेशा एक जैसे होते हैं। नमस्कार, आदाब, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और आज का ये खास अंश अल्फाज का नहीं एहसास का है, जहां कहानियां दिलों से निकलकर दिलों तक जाएंगी, जहां नज़में सरहदें नहीं देखेंगी और जहां हर आवाज एक नए रिश्ते को जन्म देगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे उर्दू की नज़ाकत और हिंदी की मिठास मेलबर्न की मल्टीकल्चरल रूह को एक ही मंच पर साथ ला रही है। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जो हमसे करेंगे कला, स्टोरी टेलिंग, एआई के जमाने में ओरिजिनलिटी और कई सारे मुद्दों पर खास बातचीत।
2: मेरा नाम सिद्रा है, मैं कुछ लिखती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ और कुछ सुनाती हूँ कहानियाँ।
3: हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैंने और सिद्रा ने साथ में तकरीबन एक साल पहले उड़ान नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, जो इस तरह के शोज करती है जो हमारे आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं।
1: जी, बातचीत को आगे ले जाने से पहले मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए अपना कुछ लिखा हुआ उन्हें सुना दें।
3: एक मेज पर एक चाय और अखबार छोड़कर और पास ही में अपना पिंदार छोड़कर, पिंदार प्राइड को कहते हैं, एक मेज पर एक चाय और अखबार छोड़कर और पास ही में अपना पिंदार छोड़कर, नाकाम कहानी के किरदार छोड़कर, इस पार की हर बेबसी उस पार छोड़कर, फिर लौट के जाने के आसार छोड़कर, मैं घर से चल पड़ा हूँ घर बार छोड़कर, कोई फूल जैसे तेरे रुखसार छोड़कर, जुल्फों में खनखनाते मल्हार छोड़कर, इस दिल की बढ़ती हुई रफ्तार छोड़कर, हल्की सी मुस्कुराहट का भार छोड़कर, तुम भी गए हो मुझको कई बार छोड़कर, मायूस दिल शिकस्ता तलबगार छोड़कर, हर जीत छोड़कर हर एक हार छोड़कर, तनका लिबास पांव की पैजार छोड़कर, सब दोस्त यार सारे गम खुआर छोड़कर, मिलता था जिनसे रोज मैं इतवार छोड़कर, वो किताबों में लिखे अशार छोड़कर, मेरे जॉन मीर गालिब गुलजार छोड़कर, अब आ गया हूँ बीच में गुफ्तार छोड़कर, रुकने की सारी कोशिशें बेकार छोड़कर, घर गांव खेत फसलें त्योहार छोड़कर, दो चार

0: यादें लेकर दो चार छोड़कर, तुमको भी है सुकून ये तकरार छोड़कर, मुझको भी क्या कमी है एक प्यार छोड़कर।
1: क्या बात। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आधुनिकता और टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जहां हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, कला, इतिहास और आर्ट को जिंदा रखना कितना महत्वपूर्ण है।
0: एक्चुअली मुझे ये इसका रीज़न नहीं पता है कि एआई को शायद आर्काइव्स पुराने पोइट्स के मिल नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा टाइम है अभी एआई को कुछ करने में, वो शायद आर्ट की फील्ड ही है। क्योंकि आप अगर आप एआई से बोल के कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि अभी अभी दिल्ली दूर है इसके लिए। तो और आर्टिस्ट के यूनिक पर्सपेक्टिव्स मुझे नहीं लगता अभी तक एआई ने कैप्चर किया है। हालांकि एआई को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई किसी आर्टिस्ट के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है और वो उस कॉन्सेप्ट को बता के एआई से बोलते हैं कि मुझे इसके ऊपर एक प्ले लिख के दे दीजिए, इसके ऊपर एक स्टोरी लिख के दे दीजिए, पोएम लिख के दे दीजिए, तो आपको एक स्टार्टिंग ग्राउंड मिल जाता है, आप उससे बिल्डअप कर सकते हैं। पर जितना ओरिजिनल आपका कॉन्सेप्ट है उतना ओरिजिनल आपकी राइटिंग भी होनी चाहिए, तो उसके बाद आपको काफ़ी एफर्ट डाल के उसको अपने अपने स्टाइल में बनाना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि लोग अभी भी ओरिजिनल क्रिएटिविटी देखने आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ एआई जनरेटेड कंटेंट हम आर्टिस्ट लोग अगर लोगों के सामने लाएंगे तो बहुत जल्दी उसका चार्म खत्म हो जाएगा।
2: इसके ऊपर मैं कुछ ऐड करूंगी कि जैसे आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एआई बहुत यूज हो रहा है, तो आप फौरन से पहचान सकते हैं कि कौन सी इमेज ओरिजिनली क्रिएट की गई है और कौन सी इमेज एआई से जनरेटेड है। एंड इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग टू सी कि एक ही जैसे हर चीज, कोई ब्रांड अवेयरनेस नहीं रह गई, कोई रियलिटी आपको पता ही नहीं लगती कि उस ब्रांड की क्या कहते हैं उसको, जो कोर आइडेंटिटी है वो आप समझ ही नहीं पाते। तो आई डोंट थिंक कि लोगों को वो चीज़ पसंद आती है और वो पकड़ी भी जाती है फौरन।
1: आपके आने वाले कार्यक्रम में हमें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का एक सम्मिश्रण देखने को मिलेगा, तो जानना चाहूंगी कि क्या इन दोनों भाषाओं को आगे लेकर चलना, ये क्या कोई इंटेंशनल प्रयास था?
2: हाँ जी बिल्कुल, लाहौर वालों को दिल्ली बहुत पसंद है और दिल्ली वालों को लाहौर, तो हमने कहा ये चीज बाहर भी लेके आते हैं, क्यों दिल्ली वाले।
0: जी, इसमें आर्टिस्ट को भी थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है। जैसे कुछ लोगों को थोड़ी उर्दू आती है, कुछ लोगों को ज़्यादा उर्दू आती है, कुछ उर्दू बोलने वालों को थोड़ी कम हिंदी आती है। मुझे लगता है समझने वालों को सब कुछ समझ में आ जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है। इनफैक्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर ना आए, बट अगर थोड़ी बहुत पंजाबी कोई बोल रहा है उस शो में, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं है और कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक तरह से वो आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन, उनकी आइडेंटिटी का पार्ट है। अगर आप उनसे वो छीन लेंगे, आप मुझे बोलेंगे सिर्फ उर्दू में लिखें, तो कैसे हो पाएगा? वो तो इट विल नॉट बी नेचुरल टू मी। तो इस तरह से थोड़ा सा आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी और थोड़ा ऑडियंस की समझ को ध्यान में रखते हुए उनको भी तकलीफ ना हो, इस तरह से हम शो बनाने की कोशिश करते हैं कि सबको सबको इंटरेस्ट आए।
2: उर्दू तो वैसे ही बहुत सारी जबानों का मिलन है और उसमें हिंदी भी इंटीग्रेटेड है, उसमें उर्दू पर्शियन भी इंटीग्रेटेड है, पंजाबी के भी लफ्ज़ हैं, अब हमने इंग्लिश भी ले लिया बीच में, थोड़ी देर से बाद हम फ्रेंच भी लेने वाले हैं। तो वो आई थिंक कि उर्दू की खूबसूरती तभी बाहर निकलती है जब उसमें बहुत सारी जबानें जब मिल जाती हैं और रस मिला देती हैं अपना, तो देन वो ही बाहर आता है। ये यस इट इज़ इंटेंशनल एंड आई थिंक कि हम ये दोनों ज़बानें बहुत जुड़ी हुई हैं, तो इसको ऐसे जुड़े रख के ही आगे लेके चलेंगे तो ही मज़ा आएगा।
1: जानना चाहूंगी कि लिखने की कला पर ज्यादा जोर देना चाहिए या पढ़ने यानी रेसिटेशन की कला पर, क्योंकि वो भी आपके शो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
0: आपकी आर्ट का एक्सप्रेशन जिस तरह का है, जो अभिव्यक्ति है, उस पर निर्भर करेगा। जैसे अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं जो सिर्फ प्रिंट मीडिया में जाने वाला है, आप अखबार में कुछ छाप रहे हैं या कोई किताब लिख रहे हैं, तो लेखन शैली से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो द होल थिंग बिकम्स वन सिंगल एक्ट। तो आपकी रीडिंग, परफॉर्मेंस, अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस, स्टेज सेटिंग, एवरीथिंग, हर चीज़ उसका एक हर चीज़ के समागम से वो पूरा एक्ट निकल के आएगा। तो उसमें आप किसी एक चीज़ को कम या एक को ज़्यादा नहीं आंक सकते। जैसे हमारे शो में अगर हम लोग संगीत और लेखनी और एक्टिंग और पढ़ने को सब कुछ एक साथ इंटीग्रेट करके लाएंगे, तो वो सब कुछ एक साथ ही, उसमें से कोई भी एलिमेंट निकाल देंगे तो वो ओरिजिनल जो एक्ट था वो रह नहीं जाएगा।

0: कम्युनिटी का कितना बड़ा हाथ होता है ऐसी कलाओं को आगे ले जाने में, ऐसे लोगों को वो स्टेज देने में जहाँ पर वो अपनी कलाओं को प्रस्तुत कर सकें। साथ ही आपकी पहल में ऐसा क्या खास है?
1: मैंने और सिद्रा ने साथ में तकरीबन एक साल पहले उड़ान नाम की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, जो इस तरह के शोज करती है जो हमारे आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं।
2: वो भूले दास्तां
1: हमारा ये चौथा शो है। मेलबर्न की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे पहले तीन शोज को इतना बड़ा सक्सेस बनाया। ये पहली बार हम एक स्टोरी टेलिंग शो कर रहे हैं जिसमें अलग अलग लोग आके अपनी लिखी हुई या किसी फेमस इंसान की लिखी हुई पढ़ सकते हैं जैसा उनको अच्छा लगे। और इसमें यूनिकली हम लोग म्यूजिक इंटीग्रेट कर रहे हैं उन स्टोरीज के साथ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बड़े मन से हमने लिखा है, बड़े मन से इसकी तैयारियां चल रही हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसमें आकर शरीक होंगे और इसको भी उतनी बड़ी सक्सेस बनाएंगे जितनी बाकी शोज को बनाया। 31st मई को संडे को, और प्लीज आए, अपनी फैमिलीज के साथ आए, बच्चों के लिए भी अच्छा है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है, इनफैक्ट कुछ सीख के जाएंगे।
2: अर्ज किया है।
3: श्योर।
2: हुस्न बेजार हो नहीं सकता क्योंकि मुजस्मे बोला नहीं करते। हुस्न बेजार हो नहीं सकता क्योंकि मुजस्मे बोला नहीं करते। दिल खोला नहीं करते कभी जो आंसू आ जाए तो, खुल के रोया नहीं करते। तुम तो खूबसूरत हो हसीना, हंसो और खूब हंसो। इजाजत नहीं तुम्हें कि दिल जो टूट जाए तो, ये राज किसी पे खुला नहीं करते। बहुत शुक्रिया।
0: दोस्तों आपको बता दूं कि इस अंश में प्रस्तुत जानकारी व्यक्तिगत है, SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत। SBS न्यूज के लिए इस अंश को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
4: तो श्रोताओं आप ये जान रहे थे कि किस तरह से स्लैम पोएट्री और रिसाइटेशन कला को एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन रही है। और यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि हमारे श्रोता मनीष जी ने बिल्कुल सही पहचाना उन इंस्ट्रूमेंट्स को। जी हाँ, ये थे गिटार, बांसुरी और सितार।

और श्रोताओं ये भी बताती चलूं कि जो शुरू में गाना सुनवाया था वो था फिल्म प्रेम पर्वत का और उसके संगीतकार थे जयदेव। बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हमारे कई श्रोताओं की और संदेश भी आए हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपसे मुलाकात करूंगी कल के कार्यक्रम में, यानी शनिवार के कार्यक्रम में भी आप मेरा साथ देंगे, इसी उम्मीद के साथ आपसे अब विदा ले रही हूँ। अनीता बरार का नमस्कार, और आपको छोड़े जा रही हूँ इसी गाने के साथ।

Get a

कुछ ऐसा कि मैं बाकी सब लड़कियों के बारे में सोचना छोड़ रहा हूँ। माना कि थोड़ा बिजी हूँ, तेरी मेरी शादी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। कब से करूँ तुझको मैं चेस बेबी, दिल में मुझे दे दे थोड़ी स्पेस बेबी, ना मुझ पे कोई मीटू वाला केस बेबी। शरीफ

சொல்லியே நக்கரே ஹசு கேட்டு பிட்டு கேட்டு பிட்டு.

0: नजरों में ना आया कर। तेरी बातें घर पे करा करूं, सपनों में भी पीछा करूं, बस तेरी ही तेरी परवाह करूं।
1: मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं,
2: क्या करूं।

वीडियो ट्रेंड तेरा लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा अच्छा सुन तेरी बातें टू मच है पर लौंडे का स्वैग देसी टच है तेरे यार का नाम बोलो शहर में

반찬 반찬 반찬 빨래.

Saudi.

0: हरगिज झुकेगा नहीं साला।
1: SBS South Asian।
2: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं। तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: देसी डांस पार्टी फ्राइडे एंड सैटरडे नाइट्स फ्रॉम 8 ऑन SBS साउथ एशियन।